0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि मनुष्य सभी स्थितियों और अवस्थाओं में मानव जीवन के सम्मान और उसकी सुरक्षा के प्रति समर्पित रहें तथा जीवन को ईश्वर का वरदान माने। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल धर्मग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित उपदेशक ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। इस ग्रंथ में लेखक ने बताया है कि ईश्वर के कार्य मनुष्य की समझ से परे हैं और सांसारिक सुख संपत्ति व्यर्थ है, क्योंकि यहाँ का सब कुछ नश्वर है। इसलिए ईश्वर ने जो कुछ हमें दिया है, हम उसका प्रसन्नतापूर्वक उपभोग करें और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए ईश्वर की शरण जाएं, क्योंकि ईश्वर ही हमारे सुख और हमारी शांति का स्रोत हैं।

पृथ्वी पर एक और बात व्यर्थ है। कुछ धर्मियों को दुष्टों का दंड भोगना पड़ता है और कुछ दुष्टों को धर्मियों का पुरस्कार मिल जाता है। मैं कह चुका हूं यह भी व्यर्थ है। इसलिए मेरी सिफारिश यह है, जीवन में आनंद मनाओ, क्योंकि पृथ्वी पर मनुष्य के लिए सबसे अच्छा यह है कि वह खाए पिए और प्रसन्न रहे। इस संसार में ईश्वर ने उसे जितने दिन दिए उनमें उसके परिश्रम में वह आनंद के साथ रहे। श्रोताओं, ये थे उपदेशक ग्रंथ के 8वें अध्याय के 14वें और 15वें पदों में निहित शब्द। विगत सप्ताह इन्हीं पदों की व्याख्या से हमने पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। ये पद विज्ञान और तकनीकी की बेशुमार प्रगति के बावजूद मनुष्य की असमर्थता पर चिंतन प्रस्तुत करते हैं। ईश्वर के न्याय में विलंब हो जाने से मनुष्य निराश और हताश हो जाता है। किसी समुदाय के अंदर की सच्चाई हमेशा उन मार्गों का अनुसरण नहीं करती जिनकी हम उम्मीद करते हैं और जो सही और न्यायपूर्ण होते हैं। दुष्टों को बहुत बार लंबी आरामदायक जिंदगी और दौलत का आशीर्वाद मिल जाता है और शहर में उन्हें भलाई करने वाला भी माना जाता है। यही सब भले और सीधे सरल व्यक्तियों में निराशा का कारण बनता है। श्रोताओं, 8वें अध्याय के 14वें और 15वें पदों को पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि राजा सुलेमान अनंत के दृष्टिकोण को भूल चुका था, या फिर अनंत में उसका विश्वास ही नहीं रह गया था। धरती पर हमारे इस जीवन के बाद भी जीवन है, इससे उसका विश्वास उठ गया था, इसीलिए उसे सब कुछ व्यर्थ लगने लगा था। परामर्श देता है कि जिंदगी के बुरे हालातों का भी मनुष्य सदुपयोग करे, परिश्रम करे और जीवन का आनंद उठाए, अन्यथा सब कुछ व्यर्थ है। किंतु श्रोताओं, उपदेशक भूल गया था कि ऐसे सवालों का जवाब ईश्वर की दया पर निर्भर रहता है। ईश्वर दया के सागर हैं, वे पापियों का बहिष्कार नहीं करते बल्कि उन्हें पुनः सत्य के रास्ते पर आने का मौका देते हैं।

आठवें अध्याय के अंतिम यानी कि 16वें पद में उपदेशक कहता है, जब मैंने प्रज्ञा प्राप्त करने और पृथ्वी पर मनुष्य का कार्यकलाप समझने का प्रयत्न किया तो मैंने देखा कि मनुष्य भले ही दिन रात परिश्रम करता रहे किंतु पृथ्वी पर जो कुछ हो रहा है वह उसमें ईश्वर का उद्देश्य समझने में असमर्थ है। वह कितना ही परिश्रम क्यों न करे किंतु उसे सफलता नहीं मिलती। यदि ज्ञानी यह समझने का दावा करता है तो भी वह उसका पता लगाने में असमर्थ ही होगा। श्रोताओं, जीवन की भागदौड़ हमें पूछने पर मजबूर कर देती है कि यह हमें कहाँ ले जा रही है, इसका क्या मतलब है, कोई मतलब है भी या नहीं। हम कितने ही ज्ञानी क्यों न हों, यह सवाल हमें पराजित कर देता है। ऐसा प्रतीत होता है कि हम ढूंढते रह जाते हैं किंतु जिस चीज की तलाश करते हैं वह हमें कभी मिल नहीं पाती। इसीलिए उपदेशक कहता है कि जो कुछ हमारे पास है उसी में हम संतोष कर लें। कहता है कि समझदार लोग और कथित बुद्धिमानी भले ही यह दावा करें कि उन्हें सब कुछ आता है, कड़ी मेहनत से सब कुछ का ज्ञान वे हासिल कर चुके हैं, किंतु ईश्वर के रहस्य को, ईश्वर की योजना को समझने में वे असमर्थ ही रहते हैं। श्रोताओ, न तो हमारा ज्ञान, न ही हमारा हुनर और न ही हमारे ढेर सारे अनुभव हमें ईश्वर की थाह तक पहुंचा सकते हैं। इसीलिए उपदेशक का परामर्श है कि विनम्रता पूर्वक हम अपनी सीमाओं को स्वीकार करें, सृष्टिकर्ता ईश्वर के सामर्थ्य को, ईश्वर की महिमा को पहचानें जो कि अपरंपार है। और अब आइए बाइबल धर्म ग्रंथ के उपदेशक ग्रंथ के 9वें अध्याय पर दृष्टिपात करें। इस अध्याय में एक बार फिर उपदेशक यह समझाने की कोशिश करता है कि सब मनुष्यों की गति एक जैसी होती है। वह हम सबसे आग्रह करता है कि हम जीवन के आनंद को ईश्वर का वरदान माने। कहता है कि सब कुछ समय और संयोग पर निर्भर रहता है, इसलिए प्रज्ञा की कभी भी उपेक्षा न की जाए। 9वें अध्याय के प्रथम 2 पदों में उपदेशक कहता है, इन सब बातों पर विचार करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि धर्मी और ज्ञानी और उनका सारा कार्यकलाप प्रभु के हाथ में है। कोई मनुष्य यह नहीं जानता कि उसके भाग्य में प्रेम बदा है या बैर, धर्मी और अधर्मी, भला और बुरा, शुद्ध और अशुद्ध, बलिदान चढ़ाने वाला और बलिदान नहीं चढ़ाने वाला, सब की गति एक जैसी है। भले मनुष्य की गति पापी मनुष्य के जैसी ही है। शपथ खाने वाले व्यक्ति की गति उस व्यक्ति के जैसी है जो शपथ खाने से डरता है। श्रोताओ, सभी चीजें सबके लिए एक जैसी होती हैं। मनुष्य चाहे धर्मी हो या विधर्मी, अंततः सबकी गति एक जैसी होती है। अंत में सभी को मृत्यु के पाश में पड़ना होता है। यहां ऐसा प्रतीत होता है मानो उपदेशक सुलेमान अनंत के भाव को भूल चुका था या फिर अनंत जीवन में उसका विश्वास डगमगा गया था और सब कुछ को उसने भाग्य पर छोड़ दिया था। उसने सदा सर्वदा रहने वाले जीवन में जवाबदेही की भावना को भुला दिया था। वह जो कुछ अपने सामने देखता था बस उसमें सृष्टिकर्ता ईश्वर के असीम प्रेम को कभी देखने की उसने कोशिश नहीं की। एक बार फिर उपदेशक ने सर्वशक्तिमान ईश्वर के बारे में अपने विचारों को किस्मत पर अथवा भाग्य में बदल दिया। उसे इस बात का ज्ञान था कि ईश्वर सब कुछ पर राज करते हैं। जीवन और मरण सब कुछ ईश्वर के हाथ में है। जैसा ईश्वर चाहते हैं वैसा ही होता है। फिर भी सभी मनुष्यों की गति एक जैसी होती है, चाहे वे भले हों या बुरे। स्तोत्र ग्रंथ के 19वें भजन के अनुसार उसने ईश्वर की महिमा को देखने का प्रयास नहीं किया। भजनकार कहता है, आकाश ईश्वर की महिमा बखानता और तारामंडल उसका सामर्थ्य प्रकट करता है। श्रोताओ, कई बार हमारे मन में भी यह प्रश्न उठता है कि ईश्वर है भी या नहीं, और यदि हैं
तो हमारी विनती क्यों नहीं सुनते? इन प्रश्नों का जवाब हमें ईश्वर के कार्यों में मिल जाता है, जैसा कि रोमियों को प्रेषित पत्र के पहले अध्याय के 19वें और 20वें पदों में संत पॉल लिखते हैं। ईश्वर का ज्ञान उन लोगों को स्पष्ट रूप से मिल गया है, क्योंकि ईश्वर ने उसे उन पर प्रकट किया है। संसार की सृष्टि के समय से ही ईश्वर के अदृश्य स्वरूप को, उसकी शाश्वत शक्तिमता और उसके ईश्वरत्व को बुद्धि की आंखों द्वारा उसके कार्यों में देखा जा सकता है।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप लियो चौदहवें ने अंकावा में एकत्रित इराकी युवा क्रिश्चियनों को विश्वास, प्रेम एवं आशा के मिशनरी बनने का प्रोत्साहन दिया और उनसे कहा कि वे संघर्ष एवं अस्थिरता से भरे इस भूमि पर मसीह की रोशनी एवं शांति लाने वाले बने। इराक के युवा 8 से 11 जुलाई तक अपनी वार्षिक युवा सम्मेलन के लिए एरबिल महाधम प्रांत के अंकावा में एकत्रित हैं। इस अवसर पर पोप लियो ने उन्हें आशा की मिशनरी के रूप में अपने काम को अपनाने का प्रोत्साहन दिया और उनसे ऐसे देश में ख्रिस्त की रोशनी बनने की प्रेरणा दी जो अभी भी युद्ध एवं अस्थिरता के नतीजों का सामना कर रहा है। मिशन विषय वस्तु पर सभा में भाग लेने वाले युवाओं को एक वीडियो संदेश में पोप ने याद दिलाया कि आज कलीसिया के जीवन में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। पोप ने कहा, कलीसिया का एक महत्वपूर्ण मिशन है ख्रिस्त की रोशनी बांटकर दुनिया की सेवा करना, और उन्होंने युवाओं को आने वाले साल में कलीसिया एवं दुनिया को आकार देने में मदद करने के लिए प्रोत्साहित किया। पहले कही गई अपनी बात को याद करते हुए पोप लियो ने इस बात पर जोर दिया कि युवा न सिर्फ कलीसिया के भविष्य हैं बल्कि वर्तमान भी हैं और उस मुश्किल सच्चाई को पहचानते हुए जिसका सामना कई इराकी ख्रिस्ते अभी भी कर रहे हैं, पोप मानते हैं कि सुसमाचार का साक्ष्य देना अक्सर मुश्किल होता है। आपको ऐसी परिस्थिति में यह रोशनी फैलाने के लिए बुलाया गया है जो अक्सर युद्ध एवं अस्थिरता से भरी है। पोप लियो ने कहा, डरो मत और यह मत सोचो कि तुम इस काम में अकेले हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कलीसिया तुम्हारे साथ है, यीशु पर भरोसा रखो। रोशनी की छवि को अपने विचारों के मार्गदर्शक धागे के रूप में इस्तेमाल करते हुए वे तीन गुणों पर जोर देते हैं जो हर ख्रिस्त शिष्य को बनना चाहिए, विश्वास, प्रेम और आशा। सबसे पहले वे बताते हैं कि प्रकाश हमें देखने में सक्षम बनाता है, इसलिए विश्वास केवल जीवन की कठिनाइयों का जवाब नहीं है बल्कि वास्तविकता की पहचान एवं सच्चाई में जीना है जो विश्वासियों को दुनिया, दूसरों और खुद को ईश्वर की आंखों के माध्यम से देखने की अनुमति देता है। वे युवाओं को अपने जीवन जीने के तरीके के माध्यम से गवाही देने के लिए प्रोत्साहित करते हैं ताकि अन्य लोग भी उस सत्य एवं अर्थ की खोज कर सकें जो वे खोज रहे हैं। पोप तब प्रकाश को गर्म जोशी के रूप में दिखाते हैं जो ईश्वर के प्रेम का प्रतीक है। उनका कहना है कि सच्चा मिशन गतिविधि से नहीं बल्कि दैनिक प्रार्थना और संस्कारों से, विशेषकर मेल मिलाप संस्कार और पौत्री यूखरिस्त के माध्यम से पोषित ख्रिस्त के साथ एक व्यक्तिगत मुलाकात से शुरू होता है। पोप युवाओं से आग्रह करते हैं कि वे अपने हृदयों को अपने प्रति ईश्वर के प्रेम की ठोस नींव पर स्थापित करें, मसीह के हृदय को खोजें और उन पर अपना जीवन बनाने के लिए नहीं डरें। वे समझाते हैं कि केवल उस प्रेम से जुड़े रहकर ही वे अपने आसपास के लोगों के साथ ईश्वर के प्रेम की गर्माहट और उनके मेल मिलाप की शक्ति की कृपा को साझा कर सकते हैं। अंत में पोप लियो चौदहवें प्रकाश को विकास एवं आशा के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं कि मेल मिलाप के लिए तरस रहे क्षेत्रों में युवा ख्रिस्तों को शांति के निर्माता बनने के लिए बुलाया गया है। उन्होंने कहा, आपको विशेष रूप से शांति दूत बनने, अपने आसपास के लोगों को एकजुट करने और दूसरों को स्थायी शांति द्वारा चिन्हित भविष्य की आशा पैदा करने के लिए बुलाया गया है। हालांकि वे हमेशा उन परिस्थितियों को कंट्रोल नहीं कर सकते जिनमें वे रहते हैं, फिर भी वे उन्हें याद दिलाते हैं कि हमेशा अपने दिलों में ख्रिस्त की शांति को राज करने का विकल्प चुनें जिससे वे पुनर्जीवित प्रभु से मिलने वाली आशा के चिन्ह बन सकें। अपना संदेश समाप्त करते हुए पोप लियो ने युवाओं को कलीसिया की माता मरियम के संरक्षण में सौंप दिया और उन्हें अपने जीवन के लिए ईश्वर की प्रेम भरी योजना पर भरोसा करने का प्रोत्साहन दिया। रब्बात के महाधर्माध्यक्ष का कहना है कि उन पर वयस्क महिलाओं के साथ गलत व्यवहार करने का आरोप लगाया गया है और कलीसिया ने शुरुआती जाँच शुरू कर दी है। जांच का नतीजा आने तक वे सार्वजनिक समारोहों और धर्माध्यक्ष के रूप में अपने प्रेरित कार्यों को नहीं करेंगे तथा धर्म प्रांत पीड़ितों और अपने लिए प्रार्थना करने का आग्रह किया है।
रब्बात के महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल क्रिस्टोबल लोपेज रोमेरो एसडीवी ने घोषणा की है कि जब तक वयस्क महिलाओं के साथ गलत व्यवहार के आरोपों की शुरुआती जांच कलीसिया द्वारा नहीं हो जाती, तब तक वे कुछ समय के लिए सार्वजनिक प्रेरितिक सेवा से पीछे हट रहे हैं। बुधवार 7 जुलाई को जारी एक बयान में 74 साल के स्पानी कार्डिनल ने कहा कि जांच अब रोमन कैथोलिक कलीसिया के हाथ में है और उन्होंने पूरा सहयोग करने का वादा किया। इस प्रक्रिया में दखल देने से बचने के लिए उन्होंने कहा कि वे सार्वजनिक समारोहों की अध्यक्षता करने और प्रेरितिक कार्यों में हिस्सा लेने से बचेंगे। कार्डिनल लोपेज ने समझने की अपील की है और कहा है कि धर्म प्रांतीय समुदाय को बिना देर जानकारी मिलने चाहिए। उन्होंने विश्वासियों को उन लोगों के लिए प्रार्थना करने हेतु आमंत्रित किया है जो परेशान हैं मोरक्को की कलीसिया के लिए और अपने लिए भी, और उन्हें एकजुट रहने और भरोसे के साथ सुसमाचार पर चलते रहने का प्रोत्साहन दिया है। AFP को दिए एक अलग बयान में कार्डिनल ने जांच में अपना पूरा सहयोग दोहराया है और कहा है कि उन्होंने कोई हमला, कोई हिंसा और कोई यौन उत्पीड़न नहीं किया है। इस्लामाबाद रावलपिंडी धर्म प्रांत के महाधर्माध्यक्ष जोसेफ अरशद बच्चों को दुर्व्यवहार या शोषण से बचाने के लिए पाकिस्तान में कलीसिया की प्रतिबद्धता पर चिंतन करते हुए जोर देते हैं कि बाल सुरक्षा सिर्फ एक पारिवारिक मामला नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय नैतिक जिम्मेदारी है। महाधर्माध्यक्ष ने इस बात पर जोर दिया है कि बच्चों की सुरक्षा बहुत जरूरी है। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार। आइए हम मिलकर संत पापा के साथ चलें। संत पापा की प्रेरिताएं शांति, आशा, करुणा में मदद करें। संत पापा का समर्थन करें। संत पेत्रुस के पुण्य कार्य हेतु दान करें। वेबसाइट www.obolodisantpietro.va पर जरूर जाएं।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि मनुष्य सभी स्थितियों और अवस्थाओं में मानव जीवन के सम्मान और उसकी सुरक्षा के प्रति समर्पित रहें तथा जीवन को ईश्वर का वरदान माने। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल धर्मग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित उपदेशक ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। इस ग्रंथ में लेखक ने बताया है कि ईश्वर के कार्य मनुष्य की समझ से परे हैं और सांसारिक सुख संपत्ति व्यर्थ है, क्योंकि यहाँ का सब कुछ नश्वर है। इसलिए ईश्वर ने जो कुछ हमें दिया है, हम उसका प्रसन्नतापूर्वक उपभोग करें और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए ईश्वर की शरण जाएं, क्योंकि ईश्वर ही हमारे सुख और हमारी शांति का स्रोत हैं।

पृथ्वी पर एक और बात व्यर्थ है। कुछ धर्मियों को दुष्टों का दंड भोगना पड़ता है और कुछ दुष्टों को धर्मियों का पुरस्कार मिल जाता है। मैं कह चुका हूं यह भी व्यर्थ है। इसलिए मेरी सिफारिश यह है, जीवन में आनंद मनाओ, क्योंकि पृथ्वी पर मनुष्य के लिए सबसे अच्छा यह है कि वह खाए पिए और प्रसन्न रहे। इस संसार में ईश्वर ने उसे जितने दिन दिए उनमें उसके परिश्रम में वह आनंद के साथ रहे। श्रोताओं, ये थे उपदेशक ग्रंथ के 8वें अध्याय के 14वें और 15वें पदों में निहित शब्द। विगत सप्ताह इन्हीं पदों की व्याख्या से हमने पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। ये पद विज्ञान और तकनीकी की बेशुमार प्रगति के बावजूद मनुष्य की असमर्थता पर चिंतन प्रस्तुत करते हैं। ईश्वर के न्याय में विलंब हो जाने से मनुष्य निराश और हताश हो जाता है। किसी समुदाय के अंदर की सच्चाई हमेशा उन मार्गों का अनुसरण नहीं करती जिनकी हम उम्मीद करते हैं और जो सही और न्यायपूर्ण होते हैं। दुष्टों को बहुत बार लंबी आरामदायक जिंदगी और दौलत का आशीर्वाद मिल जाता है और शहर में उन्हें भलाई करने वाला भी माना जाता है। यही सब भले और सीधे सरल व्यक्तियों में निराशा का कारण बनता है। श्रोताओ, 8वें अध्याय के 14वें और 15वें पदों को पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि राजा सुलेमान अनंत के दृष्टिकोण को भूल चुका था, या फिर अनंत में उसका विश्वास ही नहीं रह गया था। धरती पर हमारे इस जीवन के बाद भी जीवन है, इससे उसका विश्वास उठ गया था, इसीलिए उसे सब कुछ व्यर्थ लगने लगा था। परामर्श देता है कि जिंदगी के बुरे हालातों का भी मनुष्य सदुपयोग करे, परिश्रम करे और जीवन का आनंद उठाए, अन्यथा सब कुछ व्यर्थ है। किंतु श्रोताओं, उपदेशक भूल गया था कि ऐसे सवालों का जवाब ईश्वर की दया पर निर्भर रहता है। ईश्वर दया के सागर हैं, वे पापियों का बहिष्कार नहीं करते बल्कि उन्हें पुनः सत्य के रास्ते पर आने का मौका देते हैं।

आठवें अध्याय के अंतिम यानी कि 16वें पद में उपदेशक कहता है, जब मैंने प्रज्ञा प्राप्त करने और पृथ्वी पर मनुष्य का कार्यकलाप समझने का प्रयत्न किया तो मैंने देखा कि मनुष्य भले ही दिन रात परिश्रम करता रहे, किंतु पृथ्वी पर जो कुछ हो रहा है वह उसमें ईश्वर का उद्देश्य समझने में असमर्थ है। वह कितना ही परिश्रम क्यों न करे, किंतु उसे सफलता नहीं मिलती। यदि ज्ञानी यह समझने का दावा करता है तो भी वह उसका पता लगाने में असमर्थ ही होगा। श्रोताओं, जीवन की भागदौड़ हमें पूछने पर मजबूर कर देती है कि यह हमें कहाँ ले जा रही है, इसका क्या मतलब है, कोई मतलब है भी या नहीं। हम कितने ही ज्ञानी क्यों न हों, यह सवाल हमें पराजित कर देता है। ऐसा प्रतीत होता है कि हम ढूंढते रह जाते हैं, किंतु जिस चीज की तलाश करते हैं वह हमें कभी मिल नहीं पाती। इसीलिए उपदेशक कहता है कि जो कुछ हमारे पास है उसी में हम संतोष कर लें। कहता है कि समझदार लोग और कथित बुद्धिमानी भले यह दावा करें कि उन्हें सब कुछ आता है, कड़ी मेहनत से सब कुछ का ज्ञान वे हासिल कर चुके हैं, किंतु ईश्वर के रहस्य को, ईश्वर की योजना को समझने में वे असमर्थ ही रहते हैं। श्रोताओ, न तो हमारा ज्ञान, न ही हमारा हुनर और न ही हमारे ढेर सारे अनुभव हमें ईश्वर की थाह तक पहुंचा सकते हैं। इसीलिए उपदेशक का परामर्श है कि विनम्रता पूर्वक हम अपनी सीमाओं को स्वीकार करें, सृष्टिकर्ता ईश्वर के सामर्थ्य को, ईश्वर की महिमा को पहचानें जो कि अपरंपार है। और अब आइए बाइबल धर्म ग्रंथ के उपदेशक ग्रंथ के 9वें अध्याय पर दृष्टिपात करें। इस अध्याय में एक बार फिर उपदेशक यह समझाने की कोशिश करता है कि सब मनुष्यों की गति एक जैसी होती है। वह हम सबसे आग्रह करता है कि हम जीवन के आनंद को ईश्वर का वरदान माने। कहता है कि सब कुछ समय और संयोग पर निर्भर रहता है, इसलिए प्रज्ञा की कभी भी उपेक्षा न की जाए। 9वें अध्याय के प्रथम 2 पदों में उपदेशक कहता है, इन सब बातों पर विचार करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि धर्मी और ज्ञानी और उनका सारा कार्यकलाप प्रभु के हाथ में है। कोई मनुष्य यह नहीं जानता कि उसके भाग्य में प्रेम बधा है या बैर, धर्मी और अधर्मी, भला और बुरा, शुद्ध और अशुद्ध, बलिदान चढ़ाने वाला और बलिदान नहीं चढ़ाने वाला, सबकी गति एक जैसी है। भले मनुष्य की गति पापी मनुष्य के जैसी ही है। शपथ खाने वाले व्यक्ति की गति उस व्यक्ति के जैसी है जो शपथ खाने से डरता है। श्रोताओ, सभी चीजें सबके लिए एक जैसी होती हैं। मनुष्य चाहे धर्मी हो या विधर्मी, अंततः सबकी गति एक जैसी होती है। अंत में सभी को मृत्यु के पाश में पड़ना होता है। यहां ऐसा प्रतीत होता है मानो उपदेशक सुलेमान अनंत के भाव को भूल चुका था, या फिर अनंत जीवन में उसका विश्वास डगमगा गया था और सब कुछ को उसने भाग्य पर छोड़ दिया था। उसने सदा सर्वदा रहने वाले जीवन में जवाबदेही की भावना को भुला दिया था। वह जो कुछ अपने सामने देखता था बस उसमें सृष्टिकर्ता ईश्वर के असीम प्रेम को कभी देखने की उसने कोशिश नहीं की। एक बार फिर उपदेशक ने सर्वशक्तिमान ईश्वर के बारे में अपने विचारों को किस्मत पर अथवा भाग्य में बदल दिया। उसे इस बात का ज्ञान था कि ईश्वर सब कुछ पर राज करते हैं। जीवन और मरण सब कुछ ईश्वर के हाथ में है। जैसा ईश्वर चाहते हैं वैसा ही होता है। फिर भी सभी मनुष्यों की गति एक जैसी होती है, चाहे वे भले हों या बुरे। स्तोत्र ग्रंथ के 19वें भजन के अनुसार उसने ईश्वर की महिमा को देखने का प्रयास नहीं किया। भजनकार कहता है, आकाश ईश्वर की महिमा बखानता और तारामंडल उसका सामर्थ्य प्रकट करता है। श्रोताओ, कई बार हमारे मन में भी यह प्रश्न उठता है कि ईश्वर है भी या नहीं, और यदि हैं
तो हमारी विनती क्यों नहीं सुनते? इन प्रश्नों का जवाब हमें ईश्वर के कार्यों में मिल जाता है, जैसा कि रोमियो को प्रेषित पत्र के पहले अध्याय के 19वें और 20वें पदों में संत पॉल लिखते हैं। ईश्वर का ज्ञान उन लोगों को स्पष्ट रूप से मिल गया है, क्योंकि ईश्वर ने उसे उन पर प्रकट किया है। संसार की सृष्टि के समय से ही ईश्वर के अदृश्य स्वरूप को, उसकी शाश्वत शक्तिमता और उसके ईश्वरत्व को बुद्धि की आंखों द्वारा उसके कार्यों में देखा जा सकता है।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप लियो चौदहवें ने अंकावा में एकत्रित इराकी युवा क्रिश्चियनों को विश्वास, प्रेम एवं आशा के मिशनरी बनने का प्रोत्साहन दिया और उनसे कहा कि वे संघर्ष एवं अस्थिरता से भरे इस भूमि पर मसीह की रोशनी एवं शांति लाने वाले बने। इराक के युवा 8 से 11 जुलाई तक अपनी वार्षिक युवा सम्मेलन के लिए एरबिल महाधम प्रांत के अंकावा में एकत्रित हैं। इस अवसर पर पोप लियो ने उन्हें आशा की मिशनरी के रूप में अपने काम को अपनाने का प्रोत्साहन दिया और उनसे ऐसे देश में ख्रिस्त की रोशनी बनने की प्रेरणा दी जो अभी भी युद्ध एवं अस्थिरता के नतीजों का सामना कर रहा है। मिशन विषय वस्तु पर सभा में भाग लेने वाले युवाओं को एक वीडियो संदेश में पोप ने याद दिलाया कि आज कलीसिया के जीवन में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। पोप ने कहा, कलीसिया का एक महत्वपूर्ण मिशन है ख्रिस्त की रोशनी बांटकर दुनिया की सेवा करना, और उन्होंने युवाओं को आने वाले साल में कलीसिया एवं दुनिया को आकार देने में मदद करने के लिए प्रोत्साहित किया। पहले कही गई अपनी बात को याद करते हुए पोप लियो ने इस बात पर जोर दिया कि युवा न सिर्फ कलीसिया के भविष्य हैं बल्कि वर्तमान भी हैं और उस मुश्किल सच्चाई को पहचानते हुए जिसका सामना कई इराकी ख्रिस्ते अभी भी कर रहे हैं, पोप मानते हैं कि सुसमाचार का साक्ष्य देना अक्सर मुश्किल होता है। आपको ऐसी परिस्थिति में यह रोशनी फैलाने के लिए बुलाया गया है जो अक्सर युद्ध एवं अस्थिरता से भरी है। पोप लियो ने कहा, डरो मत और यह मत सोचो कि तुम इस काम में अकेले हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कलीसिया तुम्हारे साथ है, यीशु पर भरोसा रखो। रोशनी की छवि को अपने विचारों के मार्गदर्शक धागे के रूप में इस्तेमाल करते हुए वे तीन गुणों पर जोर देते हैं जो हर ख्रिस्त शिष्य को बनना चाहिए, विश्वास, प्रेम और आशा। सबसे पहले वे बताते हैं कि प्रकाश हमें देखने में सक्षम बनाता है, इसलिए विश्वास केवल जीवन की कठिनाइयों का जवाब नहीं है बल्कि वास्तविकता की पहचान एवं सच्चाई में जीना है जो विश्वासियों को दुनिया, दूसरों और खुद को ईश्वर की आंखों के माध्यम से देखने की अनुमति देता है। वे युवाओं को अपने जीवन जीने के तरीके के माध्यम से गवाही देने के लिए प्रोत्साहित करते हैं ताकि अन्य लोग भी उस सत्य एवं अर्थ की खोज कर सकें जो वे खोज रहे हैं। पोप तब प्रकाश को गर्म जोशी के रूप में दिखाते हैं जो ईश्वर के प्रेम का प्रतीक है। उनका कहना है कि सच्चा मिशन गतिविधि से नहीं बल्कि दैनिक प्रार्थना और संस्कारों से, विशेषकर मेल मिलाप संस्कार और पौत्री यूखरिस्त के माध्यम से पोषित ख्रिस्त के साथ एक व्यक्तिगत मुलाकात से शुरू होता है। पोप युवाओं से आग्रह करते हैं कि वे अपने हृदयों को अपने प्रति ईश्वर के प्रेम की ठोस नींव पर स्थापित करें, मसीह के हृदय को खोजें और उन पर अपना जीवन बनाने के लिए नहीं डरें। वे समझाते हैं कि केवल उस प्रेम से जुड़े रहकर ही वे अपने आसपास के लोगों के साथ ईश्वर के प्रेम की गर्माहट और उनके मेल मिलाप की शक्ति की कृपा को साझा कर सकते हैं। अंत में पोप लियो चौदहवें प्रकाश को विकास एवं आशा के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं कि मेल मिलाप के लिए तरस रहे क्षेत्रों में युवा ख्रिस्तों को शांति के निर्माता बनने के लिए बुलाया गया है। उन्होंने कहा, आपको विशेष रूप से शांति दूत बनने, अपने आसपास के लोगों को एकजुट करने और दूसरों को स्थायी शांति द्वारा चिन्हित भविष्य की आशा पैदा करने के लिए बुलाया गया है। हालांकि वे हमेशा उन परिस्थितियों को कंट्रोल नहीं कर सकते जिनमें वे रहते हैं, फिर भी वे उन्हें याद दिलाते हैं कि हमेशा अपने दिलों में ख्रिस्त की शांति को राज करने का विकल्प चुनें जिससे वे पुनर्जीवित प्रभु से मिलने वाली आशा के चिन्ह बन सकें। अपना संदेश समाप्त करते हुए पोप लियो ने युवाओं को कलीसिया की माता मरियम के संरक्षण में सौंप दिया और उन्हें अपने जीवन के लिए ईश्वर की प्रेम भरी योजना पर भरोसा करने का प्रोत्साहन दिया। रब्बात के महाधर्माध्यक्ष का कहना है कि उन पर वयस्क महिलाओं के साथ गलत व्यवहार करने का आरोप लगाया गया है और कलीसिया ने शुरुआती जाँच शुरू कर दी है। जांच का नतीजा आने तक वे सार्वजनिक समारोहों और धर्माध्यक्ष के रूप में अपने प्रेरित कार्यों को नहीं करेंगे तथा धर्म प्रांत पीड़ितों और अपने लिए प्रार्थना करने का आग्रह किया है। रब्बात के महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल क्रिस्टोबल लोपेज रोमेरो एसडीवी ने घोषणा की है कि जब तक
वयस्क महिलाओं के साथ गलत व्यवहार के आरोपों की शुरुआती जांच कलीसिया द्वारा नहीं हो जाती तब तक वे कुछ समय के लिए सार्वजनिक प्रेरितिक सेवा से पीछे हट रहे हैं। बुधवार 7 जुलाई को जारी एक बयान में 74 साल के स्पानी कार्डिनल ने कहा कि जांच अब रोमन कैथोलिक कलीसिया के हाथ में है और उन्होंने पूरा सहयोग करने का वादा किया। इस प्रक्रिया में दखल देने से बचने के लिए उन्होंने कहा कि वे सार्वजनिक समारोहों की अध्यक्षता करने और प्रेरितिक कार्यों में हिस्सा लेने से बचेंगे। कार्डिनल लोपेज ने समझने की अपील की है और कहा है कि धर्म प्रांतीय समुदाय को बिना देर जानकारी मिलने चाहिए। उन्होंने विश्वासियों को उन लोगों के लिए प्रार्थना करने हेतु आमंत्रित किया है जो परेशान हैं मोरक्को की कलीसिया के लिए और अपने लिए भी, और उन्हें एकजुट रहने और भरोसे के साथ सुसमाचार पर चलते रहने का प्रोत्साहन दिया है। AFP को दिए एक अलग बयान में कार्डिनल ने जांच में अपना पूरा सहयोग दोहराया है और कहा है कि उन्होंने कोई हमला, कोई हिंसा और कोई यौन उत्पीड़न नहीं किया है। इस्लामाबाद रावलपिंडी धर्म प्रांत के महाधर्माध्यक्ष जोसेफ अरशद बच्चों को दुर्व्यवहार या शोषण से बचाने के लिए पाकिस्तान में कलीसिया की प्रतिबद्धता पर चिंतन करते हुए जोर देते हैं कि बाल सुरक्षा सिर्फ एक पारिवारिक मामला नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय नैतिक जिम्मेदारी है। महाधर्माध्यक्ष ने इस बात पर जोर दिया है कि बच्चों की सुरक्षा बहुत जरूरी है। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार। आइए हम मिलकर संत पापा के साथ चलें। संत पापा की प्रेरिताएं शांति, आशा, करुणा में मदद करें। संत पापा का समर्थन करें। संत पेत्रुस के पुण्य कार्य हेतु दान करें। वेबसाइट www.obolodisantpetro.va पर जरूर जाएं।

0: लौदेतुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय। आप सुन रहे हैं वैटिकन रेडियो। वैटिकन रेडियो के चैपल से पौत्र रोजरी माला विनती।
1: क्रूस का चिन्ह
2: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।
1: प्रेरितों का धर्म सार,
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा द्वारा गर्भ में आए और कुमारी मरियम से जन्मे, पोंतुस पिलातुस के समय दुख उठाए, क्रूस पर ठोके गए, मर गए, दफनाए गए और लिम्बुस में उतरे,

0: जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारे प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब है और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
2: दुख के भेद। पहला भेद, बारी में प्रभु यीशु की प्राण पीड़ा।
0: मतलब हमें दुख तकलीफ में मदद मिले। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: दुख के दूसरा भेद, यीशु कोड़ों से मारे जाते हैं,
0: मतलब हमारे रिश्तेदारों की आत्मिक भलाई के लिए। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया।

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: दुख का तीसरा भेद, प्रभु यीशु को सर पर कांटों का मुकुट पहनाया जाता है।
0: मतलब हम दुख में ना कुरकुराएं। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: दुख का चौथा भेद, प्रभु यीशु अपने कंधों पर भारी क्रूस उठाते हैं,
0: मतलब हमारा मरण पवित्र हो। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: दुख का पांचवा भेद, प्रभु यीशु को क्रूस पर ठोका जाता है,
0: मतलब शोधक अग्नि की आत्माओं के लिए। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: कुमारी मरियम की स्तुति विनती। प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त दया कर,
1: ख्रिस्त दया कर,
0: प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त हमारी सुन,
1: ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर।
0: स्वर्ग के पिता ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता,
1: हम पर दया कर।
0: पवित्र आत्मा ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: संत मरियम,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वर की पवित्र माँ,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुंवारियों की पवित्र कुंवारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्त की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वरीय कृपा की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति निर्मल माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति शुद्ध माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुंवारी माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: निष्कलंक माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रिय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रशंसनीय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सुसमति की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सृष्टिकर्ता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: मुक्तिदाता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति चौकस कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्तुति योग्य कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शक्तिमती कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दयालु कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मनिष्ठ कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हमारे आनंद का मूल,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पवित्र आत्मा का मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भक्ति का उत्तम पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आध्यात्मिक गुलाब,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दाऊद का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हस्तिदंत का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ण मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संधि की मंजूषा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भोर का तारा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: रोगियों का स्वास्थ्य,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पापियों की शरण,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दुखियों का दिलासा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्तियों की सहायता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्गदूतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्म पुरखों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: नवियों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रेरितों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शहीदों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मवीरों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदि पाप रहित उत्पन्न महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ग में उद्गृहित महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति पवित्र माला की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शांति की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमें क्षमा कर।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमारी सुन।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: हम पर दया कर।
0: हम प्रार्थना करें।
1: हे प्रभु ईश्वर, कृपा कर।

प्रेम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे, क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमेन। पिता और

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि मनुष्य सभी स्थितियों और अवस्थाओं में मानव जीवन के सम्मान और उसकी सुरक्षा के प्रति समर्पित रहें तथा जीवन को ईश्वर का वरदान माने। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है सामायिक लोकोपकारी चर्चा भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, 24 जून को वेनेजुएला के उत्तर मध्य क्षेत्र में 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो भूकंप आए थे। दोनों भूकंपों के बीच केवल 39 सेकंड का अंतर था। प्रभावित इलाकों में बचाव अभियान अब भी जारी है। 28 देशों की कम से कम 51 अंतर्राष्ट्रीय खोज एवं बचाव टीमें अब भी सबसे अधिक प्रभावित इलाकों में तैनात हैं, जिनमें 2,276 विशेषज्ञ और 165 खोजी कुत्ते शामिल हैं। वेनेजुएला सरकार ने 7 दिन के अंतर्राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। अधिकारियों के अनुसार अब तक भूकंपों में कम से कम 2,295 लोगों की मौत हुई है और 11,256 लोग घायल हुए हैं। अब तक लगभग 6,400 लोगों को बचाया जा चुका है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ ने बताया कि वेनेजुएला में आए शक्तिशाली भूकंप के बाद 18 लाख लोगों को मानवीय सहायता की जरूरत है, जिनमें लगभग 6,80,000 बच्चे हैं। उत्तरी वेनेजुएला में विनाशकारी भूकंपों के बाद ला गुएरा के अस्पताल मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण भारी दबाव में हैं। वहीं आश्रय स्थलों में बीमारियां फैलने का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
3: वेनेजुएला के उत्तरी हिस्से में 25 जून को आए विनाशकारी भूकंपों के एक सप्ताह बाद सर्वाधिक प्रभावित ला गुएरा प्रांत के अस्पतालों पर मरीजों का भारी दबाव है। अस्थायी आश्रय स्थलों में भी संक्रामक बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र समर्थित पैन अमेरिकी स्वास्थ्य संगठन पाहो ने ला गुएरा, कराकस और मिरांडा में 8 स्वास्थ्य केंद्रों का आकलन किया है। इन सभी केंद्रों को तत्काल बाहरी सहायता की आवश्यकता है, जबकि 3 को ढांचागत नुकसान पहुंचा है। हालात ऐसे हैं कि ला गुएरा के एक अस्पताल में 8 बिस्तरों के लिए बनाए गए वार्ड में 96 मरीजों को रखा जा रहा है। बिजली की कमी के कारण ट्रॉमा इकाई के वेंटिलेटर काम नहीं कर रहे हैं और पानी भी कनस्तरों के जरिए पहुंचाया जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और पाहो ने दवाएं, ट्रॉमा किट और अन्य जीवन रक्षक सामग्री पहुंचाई है, मगर यूएन एजेंसियों का कहना है कि स्वास्थ्य सेवाएं जारी रखने और बीमारी फैलने से रोकने के लिए और अधिक सहायता की तत्काल आवश्यकता है।
2: संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार अधिकारियों के अनुसार यूक्रेन में जुलाई महीने में अब तक हर दिन औसतन 170 नागरिक मारे गए या घायल हुए हैं। नागरिक हताहतों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में तेजी से बढ़ रही है। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार सोमवार रात यूक्रेन की राजधानी कीव में हुई रूसी हमलों में कम से कम 18 नागरिकों की मौत हो गई और 90 से ज्यादा लोग घायल हुए। मिसाइल और ड्रोन हमलों में बहुमंजिला रिहायशी इमारतों और अन्य नागरिक ढांचों को भारी नुकसान पहुंचा। ये हमले कीव में हुए एक अन्य रूसी हमले के केवल 4 दिन बाद हुए, जिसमें कम से कम 30 नागरिकों की मौत हुई। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
3: यूक्रेन में गुरुवार को रूसी हमलों में तेज बढ़ोतरी के बाद संयुक्त राष्ट्र और उसकी साझेदार एजेंसियां प्रभावित लोगों तक आपात सहायता पहुंचाने में जुटी हैं। राजधानी कीव पर हुआ हमला अब तक के सबसे भीषण हमलों में से एक बताया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार हमलों में कम से कम 18 लोगों की मौत हुई है और करीब 90 लोग घायल हुए हैं। घायलों में अनेक बच्चे भी शामिल हैं। रिहायशी इलाकों में भारी नुकसान पहुंचा है और ध्वस्त इमारतों के मलबे में फंसे लोगों को

0: निकालने के प्रयास जारी हैं। कीव के अनेक निवासियों को लगभग 11 घंटे तक बम आश्रय स्थलों या अपने घरों में सुरक्षित स्थानों पर छिपकर रहना पड़ा। एक एम्बुलेंस केंद्र पर हुए हमले में स्वास्थ्य कर्मी और चालक भी घायल हुए हैं। यूक्रेन में संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष मानवीय सहायता अधिकारी मैथियास शमाले ने हमलों की निंदा करते हुए कहा, हम एक बालवाड़ी के पास से गुजरे जहां बच्चों को पढ़ना और सुरक्षित महसूस करना चाहिए, मगर घायलों में बच्चे भी शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का पूरा सम्मान होना चाहिए और सभी आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। ये बेवजह की हत्याएं और विनाश अब रुकना चाहिए। ये थे संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष मानवीय सहायता अधिकारी मैथियास शमाले के शब्द। यूएन एजेंसियां प्रभावित लोगों को प्राथमिक उपचार, अस्थायी आश्रय, नकद सहायता और मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रही है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने भी हमलों की कड़ी निंदा करते हुए पूर्ण, तत्काल और बिना शर्त युद्ध विराम की अपील दोहराई है।
1: विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के प्रमुख ने गुरुवार को वैश्विक स्वास्थ्य संकटों पर नवीनतम जानकारी साझा करते हुए बताया कि हंटा वायरस का प्रकोप आधिकारिक रूप से समाप्त हो गया है। 25 मई के बाद कोई नया मामला सामने नहीं आया है, जबकि अफ्रीका में इबोला का प्रसार बढ़ रहा है। कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य और युगांडा में जारी इबोला के संक्रमण फैलाव यानी प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता वाला सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया है। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
0: WHO प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस एडेनॉम घेब्रेसस ने कहा है कि वैश्विक स्वास्थ्य खतरों से कोई भी देश अकेले नहीं निपट सकता। विश्व स्वास्थ्य संकटों पर नवीनतम जानकारी साझा करते हुए उन्होंने हंटा वायरस का प्रकोप समाप्त होने की घोषणा की। हालांकि अफ्रीका में इबोला का प्रसार अब भी जारी है। हंटा वायरस प्रकोप पर डॉक्टर टेड्रोस कह रहे हैं कि इस प्रकोप में कुल 13 मामले सामने आए, जिनमें 3 लोगों की मौत हुई। 33 देशों और क्षेत्रों में संक्रमित लोगों के संपर्क में आए 650 से अधिक लोगों की पहचान की गई और स्वास्थ्य अधिकारियों ने उनकी निगरानी की। WHO प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस एडेनॉम घेब्रेसस के शब्द। वहीं लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो में इबोला के 1400 से अधिक मामलों की पुष्टि हुई है और 438 लोगों की मौत हो चुकी है। जांच और उपचार क्षमता बढ़ाई जा रही है, मगर अविश्वास और हिंसा अब भी राहत प्रयासों में बड़ी बाधा बने हुए हैं।
1: संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र विशेषज्ञ पैनल ने बुधवार को कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के अवसरों, जोखिमों और प्रभावों पर पहला वैश्विक वैज्ञानिक आकलन जारी किया। रिपोर्ट में 7 प्रमुख क्षेत्रों का आकलन किया गया है। AI, विज्ञान, उसकी प्रगति और भविष्य की दिशा, विज्ञान, स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि में AI का उपयोग, आर्थिक प्रभाव, सुरक्षा तकनीकी प्रणालियों और पर्यावरण पर प्रभाव, मानवाधिकार, सूचना और लोकतंत्र, सांस्कृतिक लाभ, व्यक्तिगत स्वायत्तता और बच्चों की सुरक्षा, प्रबंध, शासन और विश्वसनीयता। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
0: संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र विशेषज्ञ पैनल ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI के अवसरों, जोखिमों और प्रभावों पर पहला वैश्विक वैज्ञानिक आकलन जारी किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि AI स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और जलवायु कार्रवाई में तेज प्रगति का माध्यम बन सकती है, मगर इसके साथ साइबर हमलों, दुष्प्रचार, रोजगार में व्यवधान, बढ़ती असमानता और अत्यधिक स्वायत्त प्रणालियों पर नियंत्रण से जुड़े गंभीर जोखिम भी हैं। UN महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने सरकारों से कार्रवाई में देरी नहीं करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक तथ्य अब सामने हैं और साझा नियमों के बिना AI के भविष्य को आकार देने में सरकारों और आम लोगों की भूमिका लगातार कम होती जाएगी। दुनिया भर में 1 अरब से अधिक लोग हर सप्ताह संवादात्मक AI का इस्तेमाल कर रहे हैं। रिपोर्ट ने स्पष्ट किया है कि AI अपने आप असमानताएं दूर नहीं करेगी, इसके सुरक्षित, समान और जिम्मेदार उपयोग के लिए मजबूत वैश्विक शासन और निवेश जरूरी हैं।
1: आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र हिंदी समाचार से लिए गए थे, जिसे प्रस्तुत कर रही थी अंशु शर्मा। और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।

0: आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। कास्टेल गंडोल्फो स्थित उच्च शिक्षा के लिए लाउदातो सी केंद्र की पहल, जो 11 जुलाई को बोर्गो लाउदातो सी में रोम धर्म प्रांत द्वारा मदद किए गए 200 कमजोर लोगों की मेजबानी करेगी, जिसमें 35 बच्चे भी शामिल हैं। इसका मकसद एक खुली कलीसिया, एक परिवार, सबसे ज्यादा जरूरतमंद लोगों के लिए एक सुरक्षित स्थान बनाना है। उम्मीद, स्वागत, सबको शामिल करना, ये वो इच्छाएं हैं जो लंच विद द पोप पहल के आयोजक को प्रेरित किया है, जो 11 जुलाई को कास्टेल गंडोल्फो के उद्यान में होगा। 200 जरूरतमंद लोग रोम धर्म प्रांत और उससे जुड़े संगठनों के साथ एक शानदार जगह पर सुंदरता और आध्यात्मिकता में डूबे हुए पूरा दिन बिताएंगे। यह शानदार जगह, जो 400 सालों से दुनिया के लिए बंद थी, इसे संत पापा फ्रांसिस ने खोला और अब संत पापा लियो 14वें ने इसे जारी रखा है। उच्च शिक्षा के लिए लाउदातो सी केंद्र के संचार समन्वयक दोनातेल्ला पेरिसी ने जोर देकर कहा, सुबह का मिस्सा समारोह उच्च शिक्षा के लिए लाउदातो सी केंद्र के महासचिव कार्डिनल फाबियो करेंगे। मिस्सा के बाद इन मेहमानों के लिए रिफ्रेशमेंट और बोर्गो लाउदातो सी के स्टाफ के नेतृत्व में उद्यान दर्शन का इंतजाम किया जाएगा। बोर्गो लाउदातो सी उद्यान हमें रोम के इतिहास के बारे में बहुत कुछ बताता है। जहां डोमिजियानो विल्ला के खंडहर हैं, उन परमाध्यक्षों का इतिहास जो 16वीं शताब्दी से यहां आराम करने और फिर 300 अलग अलग प्रजातियों के 4000 से ज्यादा पौधों वाले उद्यान की प्राकृतिक सुंदरता में डूबने के लिए आते रहे हैं, यह शान और मेलजोल का खजाना है और हमारे दरवाजे खोलता है। उन्होंने कहा कि कलीसिया को सभी के लिए और ज्यादा खुला होना चाहिए, खासकर उन लोगों के लिए जो हाशिए पर जी रहे हैं। हमारी योजना यह है कि हर साल इस कार्यक्रम में अलग अलग धर्म प्रांत के लोगों का स्वागत किया जाएगा। पिछले साल अल्बानो धर्म प्रांत था, इस साल रोम धर्म प्रांत है। यहाँ शरणार्थी, बच्चों के साथ एकल माताएं और वे लोग होंगे जिन्होंने बोर्गो में नौकरी पाने हेतु अपना प्रशिक्षण पूरा किया है। वे सभी संत पापा के साथ जश्न मनाने के लिए वापस लौट रहे हैं। उधर बच्चों की सुरक्षा बहुत जरूरी है। पाकिस्तान में इस्लामाबाद रावलपिंडी धर्म प्रांत के महाधर्माध्यक्ष जोसेफ अरशाद ने इस बात पर जोर दिया और पाकिस्तान में समाज में बच्चों के साथ दुर्व्यवहार के बढ़ते मामलों पर गहरी चिंता जताई। महाधर्माध्यक्ष अरशाद ने पोंटिफिकल न्यूज एजेंसी फिदेस को बताया कि पाकिस्तान में बच्चों के यौन शोषण का मुद्दा अभी भी बहुत फैला हुआ है और इस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। पाकिस्तानी एनजीओ साहिल की एक रिपोर्ट के आंकड़ों का हवाला देते हुए, जो रोजाना देश भर में बच्चों के साथ गलत व्यवहार पर नजर रखता है, महाधर्माध्यक्ष अरशाद ने कहा कि 2025 में रिपोर्ट किए गए मामलों में 8% की खतरनाक बढ़ोतरी हुई है, जिसमें हिंसा के 3630 पुष्टिकृत मामले थे, यानी हर दिन औसतन 9 से ज्यादा बच्चों के साथ गलत व्यवहार होता था। रिपोर्ट में कहा गया है कि अपहरण और बलात्कार सबसे आम अपराध थे। 53% पीड़ित लड़कियां थीं। महाधर्माध्यक्ष अरशाद ने कहा कि बच्चों के खिलाफ अपराध इंसानी गरिमा का सबसे शर्मनाक और बर्दाश्त न होने वाला उल्लंघन है। सबसे ऊंचे नैतिक, सामाजिक, कानूनी और संस्थागत जिम्मेदारी के साथ सुरक्षा होनी चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा, कोई भी समाज खुद को न्यायप्रिय, शांतिपूर्ण और सभ्य नहीं कह सकता जब तक उसके बच्चे खतरे, डर और असुरक्षा में जीते हैं, क्योंकि वे ईश्वर का दिया हुआ एक पवित्र तोहफा हैं और उन्हें सबसे ऊंचे नैतिक, सामाजिक, कानूनी और संस्थागत जिम्मेदारी के साथ सुरक्षा मिलनी चाहिए। उन्होंने माता पिताओं, शिक्षकों, धार्मिक नेताओं, मीडिया, नागर समाज और सभी नागरिकों से बच्चों की सुरक्षा को अपनी जिम्मेदारी मानने की अपील की। उधर कोणार्क का पोर्ट शहर और बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट ईरान के खिलाफ हमलों के नए ठिकाने बन गए हैं। कल हुए जबरदस्त क्रॉस फायर में कम से कम 14 ईरानी मारे गए। अमेरिका इन नए हमलों की जिम्मेदारी लेने से इनकार करता है, लेकिन ईरानी अधिकारियों का मानना है कि ये अचानक नहीं हुए, क्योंकि ये हमले पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामनेई को दफनाने के समय हुए, जो 28 फरवरी को अमेरिका के साथ लड़ाई की शुरुआत में मारे गए थे। तेहरान ने पक्का विरोध करने का वादा किया है, खासकर उस मुद्दे पर जो दोनों पक्षों के बीच खींचतान के केंद्र में है। दक्षिण सूडान के नॉर्थ वेस्ट इलाके के वारप स्टेट में गुरुवार को हुए हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर कम से कम 25 हो गई है और 20 घायल हो गए हैं। हथियारबंद लड़ाकों ने एक लोकल पुलिस स्टेशन पर हमला किया और बाद में 200 से ज्यादा मवेशी चुरा लिए। वारप के सूचना मंत्री ने बताया कि मरने वालों में स्थानीय पुलिस स्टेशन के कमांडर कर्नल अकोल के साथ साथ सुरक्षा बल के सदस्य और आम लोग भी शामिल थे। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।
1: आइए हम मिलकर संत पापा के साथ चलें। संत पापा की प्रेरिताएं शांति, आशा, करुणा में मदद करें। संत पापा का समर्थन करें। संत पेत्रुस के पुण्य कार्य हेतु दान करें। वेबसाइट www.obolodesantpetro.va पर जरूर जाएं।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि मनुष्य सभी स्थितियों और अवस्थाओं में मानव जीवन के सम्मान और उसकी सुरक्षा के प्रति समर्पित रहें तथा जीवन को ईश्वर का वरदान माने। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है सामायिक लोकोपकारी चर्चा भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओ, 24 जून को वेनेजुएला के उत्तर मध्य क्षेत्र में 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो भूकंप आए थे। दोनों भूकंपों के बीच केवल 39 सेकंड का अंतर था। प्रभावित इलाकों में बचाव अभियान अब भी जारी है। 28 देशों की कम से कम 51 अंतर्राष्ट्रीय खोज एवं बचाव टीमें अब भी सबसे अधिक प्रभावित इलाकों में तैनात है, जिनमें 2,276 विशेषज्ञ और 165 खोजी कुत्ते शामिल हैं। वेनेजुएला सरकार ने 7 दिन के अंतर्राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। अधिकारियों के अनुसार अब तक भूकंपों में कम से कम 2,295 लोगों की मौत हुई है और 11,256 लोग घायल हुए हैं। अब तक लगभग 6,400 लोगों को बचाया जा चुका है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ ने बताया कि वेनेजुएला में आए शक्तिशाली भूकंप के बाद 18 लाख लोगों को मानवीय सहायता की जरूरत है, जिनमें लगभग 6,80,000 बच्चे हैं। उत्तरी वेनेजुएला में विनाशकारी भूकंपों के बाद लागुएरा के अस्पताल मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण भारी दबाव में हैं। वहीं आश्रय स्थलों में बीमारियां फैलने का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
3: वेनेजुएला के उत्तरी हिस्से में 25 जून को आए विनाशकारी भूकंपों के एक सप्ताह बाद सर्वाधिक प्रभावित लागुएरा प्रांत के अस्पतालों पर मरीजों का भारी दबाव है। अस्थायी आश्रय स्थलों में भी संक्रामक बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र समर्थित पैन अमेरिकी स्वास्थ्य संगठन पाहो ने लागुएरा, कराकस और मिरांडा में 8 स्वास्थ्य केंद्रों का आकलन किया है। इन सभी केंद्रों को तत्काल बाहरी सहायता की आवश्यकता है, जबकि 3 को ढांचागत नुकसान पहुंचा है। हालात ऐसे हैं कि लागुएरा के एक अस्पताल में 8 बिस्तरों के लिए बनाए गए वार्ड में 96 मरीजों को रखा जा रहा है। बिजली की कमी के कारण ट्रॉमा इकाई के वेंटिलेटर काम नहीं कर रहे हैं और पानी भी कनस्तरों के जरिए पहुंचाया जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और पाहो ने दवाएं, ट्रॉमा किट और अन्य जीवन रक्षक सामग्री पहुंचाई है, मगर यूएन एजेंसियों का कहना है कि स्वास्थ्य सेवाएं जारी रखने और बीमारी फैलने से रोकने के लिए और अधिक सहायता की तत्काल आवश्यकता है।
2: संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार अधिकारियों के अनुसार यूक्रेन में जुलाई महीने में अब तक हर दिन औसतन 170 नागरिक मारे गए या घायल हुए हैं। नागरिक हताहतों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में तेजी से बढ़ रही है। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार सोमवार रात यूक्रेन की राजधानी कीव में हुई रूसी हमलों में कम से कम 18 नागरिकों की मौत हो गई और 90 से ज्यादा लोग घायल हुए। मिसाइल और ड्रोन हमलों में बहुमंजिला रिहायशी इमारतों और अन्य नागरिक ढांचों को भारी नुकसान पहुंचा। ये हमले कीव में हुए एक अन्य रूसी हमले के केवल 4 दिन बाद हुए, जिसमें कम से कम 30 नागरिकों की मौत हुई। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
3: यूक्रेन में गुरुवार को रूसी हमलों में तेज बढ़ोतरी के बाद संयुक्त राष्ट्र और उसकी साझेदार एजेंसियां प्रभावित लोगों तक आपात सहायता पहुंचाने में जुटी हैं। राजधानी कीव पर हुआ हमला अब तक के सबसे भीषण हमलों में से एक बताया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार हमलों में कम से कम 18 लोगों की मौत हुई है और करीब 90 लोग घायल हुए हैं। घायलों में अनेक बच्चे भी शामिल हैं। रिहायशी इलाकों में भारी नुकसान पहुंचा है और ध्वस्त इमारतों के मलबे में फंसे लोगों को निकालने के प्रयास जारी हैं। कीव के अनेक निवासियों को लगभग 11 घंटे तक बम आश्रय स्थलों या अपने घरों में सुरक्षित स्थानों पर छिपकर रहना पड़ा। एक एम्बुलेंस केंद्र पर हुए हमले में स्वास्थ्य कर्मी और चालक भी घायल हुए हैं। यूक्रेन में संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष मानवीय सहायता अधिकारी मैथियास शामाले ने हमलों की निंदा करते हुए कहा, हम एक बालवाड़ी के पास से गुजरे जहां बच्चों को पढ़ना और सुरक्षित महसूस करना चाहिए, मगर घायलों में बच्चे भी शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का पूरा सम्मान होना चाहिए और सभी आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। ये बेवजह की हत्याएं और विनाश अब रुकना चाहिए। ये थे संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष मानवीय सहायता अधिकारी मैथियास शमाले के शब्द। यूएन एजेंसियां प्रभावित लोगों को प्राथमिक उपचार, अस्थायी आश्रय, नकद सहायता और मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रही है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने भी हमलों की कड़ी निंदा करते हुए पूर्ण, तत्काल और बिना शर्त युद्ध विराम की अपील दोहराई है।
2: विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के प्रमुख ने गुरुवार को वैश्विक स्वास्थ्य संकटों पर नवीनतम जानकारी साझा करते हुए बताया कि हंटा वायरस का प्रकोप आधिकारिक रूप से समाप्त हो गया है। 25 मई के बाद कोई नया मामला सामने नहीं आया है, जबकि अफ्रीका में इबोला का प्रसार बढ़ रहा है। कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य और युगांडा में जारी इबोला के संक्रमण फैलाव यानी प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता वाला सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया है। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
3: WHO प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस एडेनॉम घेब्रेसस ने कहा है कि वैश्विक स्वास्थ्य खतरों से कोई भी देश अकेले नहीं निपट सकता। विश्व स्वास्थ्य संकटों पर नवीनतम जानकारी साझा करते हुए उन्होंने हंटा वायरस का प्रकोप समाप्त होने की घोषणा की। हालांकि अफ्रीका में इबोला का प्रसार अब भी जारी है। हंटा वायरस प्रकोप पर डॉक्टर टेड्रोस कह रहे हैं कि इस प्रकोप में कुल 13 मामले सामने आए, जिनमें 3 लोगों की मौत हुई। 33 देशों और क्षेत्रों में संक्रमित लोगों के संपर्क में आए 650 से अधिक लोगों की पहचान की गई और स्वास्थ्य अधिकारियों ने उनकी निगरानी की। WHO प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस एडेनॉम घेब्रेसस के शब्द। वहीं लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो में इबोला के 1400 से अधिक मामलों की पुष्टि हुई है और 438 लोगों की मौत हो चुकी है। जांच और उपचार क्षमता बढ़ाई जा रही है, मगर अविश्वास और हिंसा अब भी राहत प्रयासों में बड़ी बाधा बने हुए हैं।
2: संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र विशेषज्ञ पैनल ने बुधवार को कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के अवसरों, जोखिमों और प्रभावों पर पहला वैश्विक वैज्ञानिक आकलन जारी किया। रिपोर्ट में 7 प्रमुख क्षेत्रों का आकलन किया गया है। AI, विज्ञान, उसकी प्रगति और भविष्य की दिशा, विज्ञान, स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि में AI का उपयोग, आर्थिक प्रभाव, सुरक्षा तकनीकी प्रणालियों और पर्यावरण पर प्रभाव, मानवाधिकार, सूचना और लोकतंत्र, सांस्कृतिक लाभ, व्यक्तिगत स्वायत्तता और बच्चों की सुरक्षा, प्रबंध, शासन और विश्वसनीयता। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
3: संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र विशेषज्ञ पैनल ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI के अवसरों, जोखिमों और प्रभावों पर पहला वैश्विक वैज्ञानिक आकलन जारी किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि AI स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और जलवायु कार्रवाई में तेज प्रगति का माध्यम बन सकती है, मगर इसके साथ साइबर हमलों, दुष्प्रचार, रोजगार में व्यवधान, बढ़ती असमानता और अत्यधिक स्वायत्त प्रणालियों पर नियंत्रण से जुड़े गंभीर जोखिम भी हैं। UN महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने सरकारों से कार्रवाई में देरी नहीं करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक तथ्य अब सामने हैं और साझा नियमों के बिना AI के भविष्य को आकार देने में सरकारों और आम लोगों की भूमिका लगातार कम होती जाएगी। दुनिया भर में 1 अरब से अधिक लोग हर सप्ताह संवादात्मक AI का इस्तेमाल कर रहे हैं। रिपोर्ट ने स्पष्ट किया है कि AI अपने आप असमानताएं दूर नहीं करेगी, इसके सुरक्षित, समान और जिम्मेदार उपयोग के लिए मजबूत वैश्विक शासन और निवेश जरूरी हैं।
2: आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र हिंदी समाचार से लिए गए थे, जिसे प्रस्तुत कर रही थीं अंशु शर्मा। और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।

0: आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। कास्टेल गंडोल्फो स्थित उच्च शिक्षा के लिए लाउदातो सी केंद्र की पहल, जो 11 जुलाई को बोर्गो लाउदातो सी में रोम धर्म प्रांत द्वारा मदद किए गए 200 कमजोर लोगों की मेजबानी करेगी, जिसमें 35 बच्चे भी शामिल हैं। इसका मकसद एक खुली कलीसिया, एक परिवार, सबसे ज्यादा जरूरतमंद लोगों के लिए एक सुरक्षित स्थान बनाना है। उम्मीद, स्वागत, सबको शामिल करना, ये वो इच्छाएं हैं जो लंच विद द पोप पहल के आयोजक को प्रेरित किया है, जो 11 जुलाई को कास्टेल गंडोल्फो के उद्यान में होगा। 200 जरूरतमंद लोग रोम धर्म प्रांत और उससे जुड़े संगठनों के साथ एक शानदार जगह पर सुंदरता और आध्यात्मिकता में डूबे हुए पूरा दिन बिताएंगे। यह शानदार जगह, जो 400 सालों से दुनिया के लिए बंद थी, इसे संत पापा फ्रांसिस ने खोला और अब संत पापा लियो 14वें ने इसे जारी रखा है। उच्च शिक्षा के लिए लाउदातो सी केंद्र के संचार समन्वयक दोनातेल्ला पेरिसी ने जोर देकर कहा, सुबह का मिस्सा समारोह उच्च शिक्षा के लिए लाउदातो सी केंद्र के महासचिव कार्डिनल फाबियो करेंगे। मिस्सा के बाद इन मेहमानों के लिए रिफ्रेशमेंट और बोर्गो लाउदातो सी के स्टाफ के नेतृत्व में उद्यान दर्शन का इंतजाम किया जाएगा। बोर्गो लाउदातो सी उद्यान हमें रोम के इतिहास के बारे में बहुत कुछ बताता है। जहां डोमिजियानो विल्ला के खंडहर हैं, उन परमाध्यक्षों का इतिहास जो 16वीं शताब्दी से यहां आराम करने और फिर 300 अलग अलग प्रजातियों के 4000 से ज्यादा पौधों वाले उद्यान की प्राकृतिक सुंदरता में डूबने के लिए आते रहे हैं, यह शान और मेलजोल का खजाना है और हमारे दरवाजे खोलता है। उन्होंने कहा कि कलीसिया को सभी के लिए और ज्यादा खुला होना चाहिए, खासकर उन लोगों के लिए जो हाशिए पर जी रहे हैं। हमारी योजना यह है कि हर साल इस कार्यक्रम में अलग अलग धर्म प्रांत के लोगों का स्वागत किया जाएगा। पिछले साल अल्बानो धर्म प्रांत था, इस साल रोम धर्म प्रांत है। यहाँ शरणार्थी, बच्चों के साथ एकल माताएं और वे लोग होंगे जिन्होंने बोर्गो में नौकरी पाने हेतु अपना प्रशिक्षण पूरा किया है। वे सभी संत पापा के साथ जश्न मनाने के लिए वापस लौट रहे हैं। उधर बच्चों की सुरक्षा बहुत जरूरी है। पाकिस्तान में इस्लामाबाद रावलपिंडी धर्म प्रांत के महाधर्माध्यक्ष जोसेफ अरशाद ने इस बात पर जोर दिया और पाकिस्तान में समाज में बच्चों के साथ दुर्व्यवहार के बढ़ते मामलों पर गहरी चिंता जताई। महाधर्माध्यक्ष अरशाद ने पोंटिफिकल न्यूज एजेंसी फिदेस को बताया कि पाकिस्तान में बच्चों के यौन शोषण का मुद्दा अभी भी बहुत फैला हुआ है और इस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। पाकिस्तानी एनजीओ साहिल की एक रिपोर्ट के आंकड़ों का हवाला देते हुए, जो रोजाना देश भर में बच्चों के साथ गलत व्यवहार पर नजर रखता है, महाधर्माध्यक्ष अरशाद ने कहा कि 2025 में रिपोर्ट किए गए मामलों में 8% की खतरनाक बढ़ोतरी हुई है, जिसमें हिंसा के 3630 पुष्टिकृत मामले थे, यानी हर दिन औसतन 9 से ज्यादा बच्चों के साथ गलत व्यवहार होता था। रिपोर्ट में कहा गया है कि अपहरण और बलात्कार सबसे आम अपराध थे। 53% पीड़ित लड़कियां थीं। महाधर्माध्यक्ष अरशाद ने कहा कि बच्चों के खिलाफ अपराध इंसानी गरिमा का सबसे शर्मनाक और बर्दाश्त न होने वाला उल्लंघन है। सबसे ऊंचे नैतिक, सामाजिक, कानूनी और संस्थागत जिम्मेदारी के साथ सुरक्षा होनी चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा, कोई भी समाज खुद को न्यायप्रिय, शांतिपूर्ण और सभ्य नहीं कह सकता जब तक उसके बच्चे खतरे, डर और असुरक्षा में जीते हैं, क्योंकि वे ईश्वर का दिया हुआ एक पवित्र तोहफा हैं और उन्हें सबसे ऊंचे नैतिक, सामाजिक, कानूनी और संस्थागत जिम्मेदारी के साथ सुरक्षा मिलनी चाहिए। उन्होंने माता पिताओं, शिक्षकों, धार्मिक नेताओं, मीडिया, नागर समाज और सभी नागरिकों से बच्चों की सुरक्षा को अपनी जिम्मेदारी मानने की अपील की। उधर कोणार्क का पोर्ट शहर और बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट ईरान के खिलाफ हमलों के नए ठिकाने बन गए हैं। कल हुए जबरदस्त क्रॉस फायर में कम से कम 14 ईरानी मारे गए। अमेरिका इन नए हमलों की जिम्मेदारी लेने से इनकार करता है, लेकिन ईरानी अधिकारियों का मानना है कि ये अचानक नहीं हुए, क्योंकि ये हमले पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामनेई को दफनाने के समय हुए, जो 28 फरवरी को अमेरिका के साथ लड़ाई की शुरुआत में मारे गए थे। तेहरान ने पक्का विरोध करने का वादा किया है, खासकर उस मुद्दे पर जो दोनों पक्षों के बीच खींचतान के केंद्र में है। दक्षिण सूडान के नॉर्थ वेस्ट इलाके के वारप स्टेट में गुरुवार को हुए हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर कम से कम 25 हो गई है और 20 घायल हो गए हैं। हथियारबंद लड़ाकों ने एक लोकल पुलिस स्टेशन पर हमला किया और बाद में 200 से ज्यादा मवेशी चुरा लिए। वारप के सूचना मंत्री ने बताया कि मरने वालों में स्थानीय पुलिस स्टेशन के कमांडर कर्नल अकोल के साथ साथ सुरक्षा बल के सदस्य और आम लोग भी शामिल थे। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।
1: आइए हम मिलकर संत पापा के साथ चलें। संत पापा की प्रेरिताएं शांति, आशा, करुणा में मदद करें। संत पापा का समर्थन करें। संत पेत्रुस के पुण्य कार्य हेतु दान करें। वेबसाइट www.obolodesantpetro.va पर जरूर जाएं।